नाम ले जा रो तने ने दिखा नहीं से प्यारे चौसिया मी यायो सूरा तुबरी शिवा ठे आलवी तु या प्रमी दिखा तनी हो ना लाली जो मा जावी जैसे मुमा अस्वां को निभावी हेलो एंड यू बी में मतिया मुमु